0: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।
1: अब रंग थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फिल नला विश्वासी समक बसुगो यसु रंगला बचब लबरी हाला जयमसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेट तथा जीवनलाई क्षण गरी अङ्क 13 रङ स्वागत मुला न वियोग तामाङ राङ्ला लुई चुरङमा दुई हाला जब राङ्दा न्यान मुला कि राङ फिरी बिलाप क्यार आक्रमण ताबन मुला राङ्दा तिगै गलत ताबा आरोप लगब लगबदिसे राङ्दा घेराब लाबा मुला थेनी गदी मध्ये हालैसे एन राङ्ला चिन्ताला परिस्थिति रि वास्तवरी तिगा ताजी बिसी गोबर दुई तेजी बारे थेनी गदेसी राङ्दा दोष पिनबार निर्णय लामा मुला थेन दे थेनी गदे राङ्ला पक्षला कथा नेनबरी इच्छुक आरे तिनीगा रङ्ग दिदेन तिगा साझा लबरे से मुला विषम राङ्ला पछरी हाइमा दमन हालै न हालै ताला जो रङ फिरी विश्वास लबरी देन राङ्ला बेनन लडाई कदे छे बारी हाइमा दमन बफदार चिमोला रोला मिन यसु ख्रिस्ट हिन्बा पहिलो योहन्ना 2:1 नाला कोला गदे एनी गदे से पाप थलगै बिसी नै चुताम एनी गदेला लागरी ब्रिवन मुला तर चुदे खालै से पाप लनोन लजी बिसम याङला लागरी परमेश्वर देन छ्याम बिन्ती रसी पिन्बा परमेश्वर से मनमा अनुसार ब्रबाई यसु ख्रिस्ट याङ देन छ्याम मुला जब हजिबै मिदा अपराधला आरोप लगाप ल मुला हाइमै हाइमै थेराङबान राङला निर्दोषित प्रमाणित लबरी परमेश्वर से वकिल्ला पेशेवर वकिल्ला आवश्यकता तामुला याङ चुमिदा प्रतिवादी वकिल बिमुला यीशु ख्रिस्ट याङला वकिल मुसुला रोनुन मुसुला जोसे याङला निर्दोषिता घोषणा लबरी याङला पाप आबा परमेश्वरला नाचा सेमुला पहिलो योहन्ना 2:7 नला सेम निबा रोगदे नाइ एनी गदिदा ब्रिवचुतम परमेश्वर से कुलबा छातम आहिन तर नच्छा हेनसेन एनी गदिदा थामुबा परमेश्वर से कुलबा तहम नो नाइ ब्रिवन मुला चुतम एनी गदेसे नच्छन थेबा वचन हिन्ना रंग से लसुबा हरेक पाप यसुला कासी खुबा मुला रंग याङला आबा परमेश्वरला नच्छा धर्मी मुसुला रङसे लसुबा हजिबायन गेला कारणसे आइनबा तसै जेखेन यसुसे क्रुसरी राङला लागरी तिगा हासे लसुजी थेग्याम रङ निर्दोष मुसुला रोमी 3:23 तिग्द विषम जम्म निगदेसे पाप लाबा मुला ओछे परमेश्वरला ग्रेन यालग्याम थारेङ ताब मुला तर परमेश्वर छ दया लाभा परमेश्वर हिन्न छेसी दया माया लसी मिगदेद तिगै अकिन्न ओरङ्गोन्नोन रङ्दा सेम निभा मि शुभ मुला तिग्द विषम ख्रिस यसुसे जम्मन मिदा लागरी रङसेन सजाय नासी मिगदेद पापला सजाय ग्याम हेबा मुला याङ बेनन्से हाइमा हाइमा गल्ती लामुला याङ चन्दोदा अपेक्षा छोन लबरी असफलताला चुसेलामा खेनी गरेसे याङसे विवाह देन लब विगतला ताम गदेला आधारी याङ दोष लगाव लब कारण पिनमुला तसै परमेश्वर से याङ द ख्रिस यसरी छार लुई बिताव लब अवसर पिन्छु मुबा याङला विगतला दोष देन लाज ग्या मुक्त लुई सोबरी प्रकाश 12:10 जमेहेन सिंह स्वर्गरी ग्रेन काइसे चुराङ विवा थेजी दहेन से याङला परमेश्वर ग्याम याङसे याङ बस थर्बा देन शक्ति ओछे परमेश्वरला युल्सा देन थेसे धन्दा थर्बा पिनबा ख्रिस्टला अधिकार उन्बा मुला तिग्द विषम याङला जो जो आले नाना आङदा गिन मिग्नोन परमेश्वरला नच्छापट्टि दोष उन्बा सैतान द स्वर्ग ग्याम बेनबा मुला प्रेरित सैतान दत्ती कडा परेशान लजिबा मुला थेसे याङ फिरी झुटो आरोप कादे लगाव लबरी निगदेदा उक्सावन ताला हेनी गरी से यांग फिर निरंतर आरोप लगा तमुला शैतान से यांग दा बिगड़ी लवा गलती कर दिला लागिरी दोषी महसूस लवरियन माइमुला थे लगबला आरोप लग कारण से लामा यांग से रंग से दोषी महसूस लामुला तेंदे आनंद महसूस लावला सट्टा यांगला तिंगला तिंग दुखा दुखा देन निराश से पिंग मुला रंग चुरंग महसूस ताबरी थाकिन शिवो शंद प्रति रंग से लशिबा हजीबाई एन गलती दा सचाब लावरी हम्बा प्रयास लशुगो थेलिचा थे बिगदला पाप गदे दा रो लुबा दाबी लशुगो रंग दा परमेश्वर ल च्याशुबा रूपरी च्याब्रे दन्छुगो जुन परमेश्वर से रंग दा रोला जेला जेबा संतान ल रूपरी सृष्टि लशुबा धार्मिकताला ज्ञाम हिन्बा रंगला बिगत दा लिच्छा थ्रासुगो हेन्दे ख्रिस येशुरी परमेश्वर से रंग दा पिन्शुब छार लुइरी सिगो आमेन रंगीला जीवनले परमेश्वर से प्रशस्त आशिष पिन्छु गए प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यन्छुजी कार्यक्रम स्प्राक माई फिट कार्यक्रमलाई बारे रे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353 हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङ्गी छङ्मदानु जयमसी नमस्कार।

लिया नया एल जी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एल जी लाइफ गुड